0: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
5: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
6: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें आगामी ओलंपिक राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
7: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
5: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
8: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराव और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
9: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल

0: ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। SIR पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, SIR पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा SIR। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने CBSE की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है, ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, CBSE ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा हॉर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू, हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi. Reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Adha being celebrated in different parts of the country today with religious fervour. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasised the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and conversions between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. We have a report.
4: While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities

0: nanga rewa ngon chuga chatenok ladakh se phia chu tang sa jing bad ke distan ji phia do song nyung ni danika stan ji thap sik sindhu jal samriddhi abhiyan nang lo ga rock check dam jate ut kan bo guzuk standard shish kyong jon ba wike sakse ni dang jatenok ibor kyu te chu phele tu sin nanga chu mang po yong tu shal te kher ma chu gar gak se borche jotenok shish kyong jon be ek se ka shet kan nang jin i chok se dam sum stak cha de chulan sarjang jat che la din chu tang chu lok gok thap se las kung ka spel tenok Kong is rock check dembo, Ladakh se koruk shungskyo be toga satchan la sir chiktang, engineering kakchan satchi gurche si rewangon chuga zateo tenok. Shishkyong junba wike saksene, rock check demi dosung nyungun chan jiktang, tanji lopshikinok mola jaz.
1: सिंधु नदी जो इतनी स्ट्रॉन्ग रिवर है जहाँ पर शेलो वाटर होता है तो इसके पानी को कैसे रोका जा सकता है उसके बाद हमने अपने ऑफिसर्स के साथ बैठकर प्लानिंग करी इस साइट को सिलेक्ट किया और मुझे आज बताने में बड़ी खुशी है कि ये देश का पहला रॉक चेक डैम है जहाँ पर किसी कॉन्क्रीट को यूज नहीं किया गया है किसी सीमेंट को यूज नहीं किया गया है नदी के आस पास आप देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर हैं इनको ही उठाकर यहाँ पर इंटरलॉक किया गया है और उसे ये चेक डैम को बनाया गया है जिस वक्त ये चेक डैम बन रहा था उस वक्त यहाँ की जो डेप्थ थी एक करीब एक फीट डेढ़ फीट की हुआ करती थी आज इस चेक डैम के बनने के बाद इसकी जो डेप्थ है वो किनारे की साइड पर करीब साढ़े चार और पांच फीट की है और सेंटर में 10 से 12 फीट की हो गई है और इसका जो पौंडे एरिया है वो करीब 500 मीटर तक चला गया है और करीब 45 मिलियन लीटर पानी को जो है ये स्टोर कर रहा है बहुत सफल प्रयोग हुआ है और इसलिए मैं इसको सफल प्रयोग कह रहा हूँ कि इसे मात्र 7 दिन के अंदर बनाया गया है ये एक सस्टेनेबल मॉडल है
0: एनसीसी डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वाडी लद्दाख First Ladakh Battalion NCC ka Lokhori Jongdar Dulin Yodkhan Basik Saza Tenok. I Lokhori Jongdar Ladakh Skao Regimental Center Gupui ka Mel De Tsez Churgu Ne Tsez Nishu Sabgyat Yang Na Diring Tsukpa Talik Zadin Jiktang Yodtenok. I Nanga NCC Cadet Doms Sumgya Hapchu Jiktu Saza Zadin Jiktang Yodtenok. Mashroom Badge Di Sali Jongdar Eliezer Jolder Memorial College Lopto Kunla Dunjak Chigik Sheri Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir ka Professor Dr. Khushid Ahmad Badi Ujuk Sena Talik Chatenok. Jongdari na Majrum Badke de na Sal Tang Zotap Si Shezgya Thete Nyam Yung Gun Lop Tukun Nis Klas Kap Sal Tenok. Mel De Tsez Nishu Sabgya Deyang Na Diring Motor Kolo Shulkan Gun La Chulche Si Na Ar Gyuk Tang Che Si Tsez Tang Bor Te Yod Khan Ba Diring Gung Seng Ijaz De Gyuk Zajak Gyang Tang Si Otenok Ta Juni De Tsez Jijak Ar Gyuk Gun Tang Che Si Tsez Tang Spil Te Otenok. Ina Tang Nyampo Akashwani Lene Tana Tsulton.

फिल्मिलु डिक्रिमेना कसता आप आई बाहर आई फिल्मिलु मोहम्मद रफी तंग लता मंगेशकर निस्कने ईसा नजत लूर सुमकन आनंद बख्शी यंग लुयांस चिकन लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधन परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्र ने कल देर रात ये आदेश जारी किया। न्यायालय ने त्विशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा पूरे देश भर में मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
2: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सावरकर की हिम्मत और देशभक्ति की भावना देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हम राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
4: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
5: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकेंड, देयर वॉज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
4: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
3: Union Home Minister Amit Shah has directed authorities to strictly enforce zero tolerance policy towards illegal constructions within 15 kilometer of the country's borders and demolish all such structures that have come up over the years. Chairing a security review meeting in Bikaner, Mr. Shah assessed security related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. The Home Ministry has assigned enhanced responsibility to the district magistrates to ensure legal and financial compliance of banking transactions in the border areas by all banks, verify big business establishments, examine their funding sources, track mule accounts and false companies, identify fake Aadhaar cards and control cross-border smuggling. The festival of sacrifice Eid ul-Adha or Bakrid is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. The faithfuls are offering Eid prayers in Eidgahs and grand mosques.

0: In national capital Delhi, main Eid prayers congregations are being held at Jama Masjid, Fatehpuri Mosque and Shahi Eidgah. President Draupadi Murmu has greeted the people on the occasion. In a message, the president said that the festival symbolizes devotion, sacrifice and selflessness. Prime Minister Narendra Modi has greeted people on the occasion of Eid al-Adha. In a social media post, Mr. Modi hoped that the occasion will deepen the spirit of brotherhood and happiness in the society. He also prayed for everyone's success and good health. Prime Minister Narendra Modi today remembered Veer Savarkar on his birth anniversary. In a social media post, Mr. Modi said, "The courage and patriotism of Veer Savarkar will always inspire people." The Prime Minister said, "Veer Savarkar's intellect and emphasis on social reform are also noteworthy." In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Sunrisers Hyderabad by 47 runs in the eliminator match in New Chandigarh last night. Tomorrow, Rajasthan Royals will take on Gujarat Titans in Qualifier 2 for a place in the final. The final match will be played on Sunday at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Earlier, Royal Challengers Bengaluru stormed into the final, beating Gujarat Titans by 92 runs in the Qualifier 1 match at Dharamshala on Tuesday. In Norway chess, R. Pragyananda defeated the Norwegian world number one Magnus Carlsen, gripping the contest to claim 3 full points in round 3 of the tournament yesterday. In contrast, world champion D. Gukesh continued to endure a difficult run, suffering another setback after losing to Alireza Firuza in the final game. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट ईरान के सैन्य ठिकाने पर हमले किए। अफ्रीका रोग नियंत्रण और बचाव संगठन ने कांगो में इबोला के प्रकोप पर नियंत्रण के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजने पर भारत का आभार प्रकट किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए 695 मिलियन डॉलर की सहायता को मंजूरी दी। ईद उल अजहा आज पूरी दुनिया भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है और आर प्रज्ञानानंद ने नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता के तीसरे दौर में विश्व नंबर एक मैग्नस कार्लसन को हराया। अब समाचार विस्तार से। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास शहर में ईरानी सैन्य ठिकाने पर हमले किए हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसके बलों ने 4 ईरानी हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। अमरीका ने कहा कि ये ड्रोन जलडमरू मध्य के आसपास खतरा पैदा कर रहे थे। ईरान की मीडिया ने शहर के पूर्व में विस्फोटों की खबर दी, हालांकि ईरान के अधिकारियों ने कहा कि हमलों से कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ है। इसराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से में निवासियों के लिए निकासी आदेश जारी किए हैं और हिजबुल्ला के खिलाफ नए हमलों से पहले इन क्षेत्रों को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसराइली रक्षा बलों ने निवासियों से जहरानी नदी के उत्तर में सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर सुरक्षित स्थान पर जाने का आग्रह किया है। इसराइल की सेना ने हिजबुल्ला पर बार बार युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया। ये 17 अप्रैल को युद्ध विराम लागू होने के बाद से सबसे बड़ा निकासी आदेश है। इसराइल ने कल दक्षिणी शहर टायर पर हमले किए। हिजबुल्ला ने इसराइल पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया है। ये हमले इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने उत्तरी इसराइल में नागरिकों पर हिजबुल्ला के ड्रोन हमलों के बाद अपने जमीनी अभियान के विस्तार की घोषणा के बाद हुए हैं। इसराइल की सेना ने पिछले 24 घंटों में 9 बार लोगों को शहर छोड़ने की चेतावनी दी है, जिससे इसराइल लेबनान सीमा पर विस्थापन की आशंका बढ़ गई है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज परिला ने देश में आपदा नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल सहायता का अनुरोध किया है। क्यूबा को अमरीका द्वारा लगाए गए ऊर्जा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल समर्थन का आग्रह किया। अमरीका द्वारा क्यूबा पर कई प्रतिबंध लगाने के बाद तथा ऊर्जा और ईंधन की कमी को लेकर देश में तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्यूबा के विदेश मंत्री ने परिषद में कहा कि उनका देश मानवीय आपदा का सामना कर रहा है, इसलिए ये समय एकजुटता दिखाने का है। अमरीकी प्रतिबंधों के कारण क्यूबा में गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है। देश में भोजन, दवा और बिजली की कमी हो गई है।

0: देश 22 घंटे या उससे अधिक समय तक बिजली कटौती से जूझ रहा है और स्थिति बेहद गंभीर है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण संगठन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
1: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। रोग नियंत्रण केंद्र ने पूरे महाद्वीप में स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के निरंतर समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बुंडी बुगियो वायरस से होने वाले इबोला स्ट्रेन के लिए कोई भी स्वीकृत दवा या टीका उपलब्ध नहीं है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने श्रीलंका को विस्तारित कोष सुविधा कार्यक्रम के तहत 695 मिलियन अमरीकी डॉलर देने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी बाहरी भुगतानों और आयात नियंत्रणों से जुड़ी दो मुख्य शर्तों का उल्लंघन होने के बावजूद दी गई है। इस कार्यक्रम की पांचवी और छठी समीक्षा पूरी होने के बाद जारी बयान में IMF ने कहा कि श्रीलंका कोई नया बाहरी भुगतान बकाया न रखने और आयात प्रतिबंधों को लगाने या उन्हें और सख्त करने से के प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। ये अवशेष भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौद्गल्यायन से संबंधित हैं। इन अवशेषों को आज भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली लाया जाएगा। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में कल इन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। ये अवशेष मंगोलिया की राजधानी उलानबतार में 31 मई से सार्वजनिक दर्शन के लिए रखे जाएंगे। वहां 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों के दर्शन के लिए पहुंचने की उम्मीद है। ये पहल भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे सांची जैसे बौद्ध तीर्थ स्थलों के प्रति विदेशी पर्यटकों की रुचि भी बढ़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
1: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
0: ईद उल अजहा आज दुनिया भर में धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ईद की मुख्य नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में अदा की जा रही है। ईद उल अजहा पैगम्बर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारतीय नागरिक अब्दुल रहीम सऊदी अरब के जेल से रिहा होने के बाद केरल में अपने घर लौट रहे हैं। रहीम सऊदी अरब की जेल में लगभग 2 दशक तक कैद थे। कोझिकोड जिले के रामनट्टुकरा के मूल निवासी रहीम आज सुबह सऊदी

100.9 का आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है दिल का मेल बॉक्स और मैं हूँ नीतू आपके साथ। और आ रहा है एक बड़ा ही धमाकेदार गाना, लेकिन ये गाना आए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी शिरकत करना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो fmgoldairdelhi@gmail.com ये है हमारा ईमेल आईडी। यहाँ पर आप अपनी पसंद के गानों की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फिलहाल तो जिनकी पसंद का गाना आ रहा है वो है चिन्मय महतो, रेखा महतो और शिवांश मंडल।

हर जगह जो है ना उसकी अपनी खासियतें होती हैं, तो अपने देश का भी कोई सानी नहीं है। तो अपने देश के ऊपर गाने सुनने की कोशिश कीजिए। अभी जो अगला गाना आ रहा है ना, वो बहुत ही मशहूर फिल्म से है। उस फिल्म की लंबाई बहुत ज्यादा थी, वो फिल्म राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी, और इस फिल्म के गाने को सुनना चाहा है बहुत सारे लोगों ने। उनमें नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, शहनाज, सुहेल, रसीद, अनम, यशफ, और इनके अलावा रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्वी और हिमाक्ष ये सुनना चाहते हैं इस गाने को। अनिल जैन, जैन साहब, संयम, मुस्कान, जीवेम सुनना चाहते हैं इस गाने को। तो चलिए जल्दी से सुन लेते हैं जो उनकी पसंद का गाना है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप दिल का मेल बॉक्स में और ढेर सारी फरमाइशें मुझ तक पहुंच रही हैं अब, लेकिन जो वक्त है वो आधा ही रह गया है तो बस मैं जल्दी से सुनवा देती हूं आपको दीवाना फिल्म का गाना जिसकी फरमाइश हम तक पहुंचाई है संदीप मक्कड़, ज्योति, मन्नत, भरत, कमल साहनी ने और इनके अलावा कुछ और लोग हैं जो इस गाने को सुनना चाहते हैं, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। तो चलिए आपकी पसंद का मुकेश जी की आवाज में सुनते हैं ये गाना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दिल का मेल बॉक्स सुन रहे हैं आप नीतू के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड पर। दिल का मेल बॉक्स में आपकी फरमाइशें पूरी होती हैं और बहुत सारे लोगों की फरमाइश आज पूरी भी हुई है, लेकिन अभी जिनकी फरमाइश पूरी हो रही है, जिनकी रिक्वेस्ट का गाना आ रहा है, वो हैं वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा, राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान। और गाना कौन सा है? सदाबहार हीरो, सदाबहार हीरोइन, सदाबहार फिल्म, पेइंग गेस्ट देवानंद नूतन।

कोई जवाब नहीं है इन सभी गानों का जो हम आपको सुनवा रहे हैं आज इस प्रोग्राम में। और अब आ रहा है आखिरी गाना, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका, भानु प्रकाश की पसंद का, और इनके अलावा राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार की फरमाइश पर गैम्बलर फिल्म से ही है ये गाना। इसमें भी देवानंद साहब ही हैं। और नीतू को आप इजाजत दीजिए, इस गाने को सुनते रहिएगा क्योंकि दिल का मेल बॉक्स का समय खत्म हो रहा है। मैं आपसे मिलती हूँ तस्वीर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर्धन संयंत्र सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 30वां राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा ने कल देर रात ये आदेश जारी किया। न्यायालय ने त्रिशा के पिता नवनिधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। आज ईद उल अजहा का पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय की प्रार्थना की। बकरीद पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर, रियाज सड़कों पर नमाज न अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने कहा है कि नमाज सिर्फ मस्जिदों और ईदगाहों में ही अदा की जानी चाहिए। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वाधीनता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर सावरकर की हिम्मत और देशभक्ति की भावना देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. President Draupadi Murmu conferred the prestigious President's Police Colour to the Sikkim Police today. The Alankaran Parade was held at the Paljor Stadium in Gangtok. Sikkim has become the 15th state of the country and 3rd from northeast to receive this award. Addressing the event, President Draupadi Murmu urged the police force to be more citizen-centric.
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
3: The President's Police Colour is the highest ceremonial honour awarded to a police force in the country in recognition of exceptional service, unwavering discipline and dedication to the nation. Union Home Minister Amit Shah will be on a visit to Gujarat today. During his visit, the minister is scheduled to inaugurate and lay the foundation stones of nearly a dozen public utility, education and rural infrastructure projects in Ahmedabad and Gandhinagar districts. Union Home Minister Amit Shah has directed authorities to strictly enforce zero tolerance policy towards illegal constructions within 15 kilometers of the country's borders and demolish all such structures that have come up over the years. Chairing a security review meeting in Bikaner, Mr. Shah assessed security related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. At least 8 people were killed across northern and eastern parts of Bihar following a wave of severe thunderstorms, lightning strikes and hailstorms. According to official reports, Khagaria and Muzaffarpur districts recorded 2 fatalities each, while Munger, Bhagalpur, East Champaran and West Champaran reported 1 death each. Chief Minister Samrat Chaudhary expressed grief over the loss of lives and directed authorities to immediately disburse an ex gratia compensation of 4 lakh rupees each to the next of kin of the deceased. India and China reviewed the situation in both areas and expressed satisfaction with progress made in maintaining peace and tranquility. The two countries reviewed the situation during the 35th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, which was held yesterday in Beijing. The Ministry of External Affairs said the two sides discussed issues pertaining to delimitation, border management, mechanism building and cross-border cooperation. The festival of sacrifice, Eid al-Azha or Bakrid, is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. The faithfuls are offering Eid prayers in Eidgahs and grand mosques. Eid al-Azha is celebrated to commemorate the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his only son in obedience of God's command. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have greeted the people on the occasion. 2-time Paralympic champion Sumit Antil shattered his own world record in the men's javelin throw F64 category at the 8th Indian Open International Para Athletics Championship 2026 in Bengaluru yesterday, producing a massive throw of 74.82 meters. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू हाजिर है एक बार फिर से। ये है तस्वीर और तस्वीर में आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक शहर की, जो कि अरावली पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। ये है अजमेर। अजमेर जिसका नाम अजय मेरू से पड़ा है, जिसका अर्थ है अजय पहाड़ी। चौहान राजाओं की पुरानी राजधानी हुआ करता था ये, और उस सांस्कृतिक विरासत की झलक यहाँ की कला और शिल्प में देखी जा सकती है। राजस्थान की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक माना जाता है अजमेर, जहाँ हिंदू और सूफी संस्कृति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है।

0: की बातें हो रही हैं आज तस्वीर में, तो अजमेर जाने के लिए बेहतरीन समय माना जाता है वो जब वहाँ या तो उर्स चल रहा हो या फिर अजमेर के पास जो पुष्कर है वहाँ पुष्कर मेला चल रहा हो। बाकी जो असल में घूमने का मौसम है वो तो अक्टूबर से मार्च है। अजमेर का निकटतम एयरपोर्ट है किशनगढ़ एयरपोर्ट, जो कि लगभग 30 किलोमीटर दूर है। वहां से आपको टैक्सी और बस आसानी से मिल जाएगी। अजमेर जंक्शन जो है वहां पूरी तरह से वो जुड़ा हुआ है दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई जैसे शहरों से। जयपुर, दिल्ली और राजस्थान के जो दूसरे शहर हैं वहां से आपको बस, टैक्सीज सब मिल जाएंगी। जयपुर से अजमेर जो है वो सिर्फ 2-3 घंटे की दूरी पर है और दिल्ली से भी बहुत ज्यादा तो नहीं है। आप चाहें तो अपनी कार से भी वहां जा सकते हैं। आप सोचिएगा कि आपको कब जाना है। मैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेके आती हूँ।
1: सभी को प्रणाम, मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूँ और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
0: अजमेर की बात कर रहे हैं आज हम तस्वीर में, जो कि खास तौर पर अजमेर प्रसिद्ध है अजमेर शरीफ दरगाह के लिए, जहां हर धर्म और समुदाय के लोग आते हैं। यहां फारस के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यहां विशाल चांदी के दरवाजे हैं जो बारीक नक्काशी से सजे हुए हैं। वैसे तो यहां साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन रमजान और उर्स के दौरान तो यहां देश विदेश से लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है। दरगाह के हॉल में ना कव्वालियों की गूंज रहती है, उन्हें कहा जाता है महफिले समा। तो अगर आप दरगाह तक जा रहे हैं ना, तो इन कव्वालियों को कुछ देर ठहर कर जरूर सुने।

अजमेर की बातें हो रही हैं आज, और अजमेर में है भारत की प्राचीन मस्जिदों में से एक अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। इसके अलावा आप अजमेर में तारागढ़ किला देखने जा सकते हैं, जो 14वीं सदी का एक बेहतरीन वास्तुशिल्प नमूना है। इसके कमरों में की गई बारीक नक्काशी और सुरंगों के जाल को देखकर ना आप एकदम हैरान हो जाएंगे। इन सुरंगों का इस्तेमाल दुश्मन के हमलों के दौरान छिपने के लिए किया जाता था। चौहान वंश के राजा जो योद्धा, जिनको हम आज भी याद ही करते हैं, पृथ्वीराज चौहान, उनको समर्पित है पृथ्वीराज स्मारक। ये इतना भव्य है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी उसे देखकर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की काले घोड़े पर सवार एक प्रतिमा भी है यहाँ, जो अरावली पहाड़ियों के बीच एक पहाड़ की चोटी पर है, जो कि दिखने में ही भव्य लगती है। अजमेर की बातें हम और भी करेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं, और उसके बाद आते हैं अजमेर की बातें करेंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ आप सुन रहे हैं तस्वीर। और आज तस्वीर में हम बात कर रहे हैं अजमेर की। अजमेर हिंदू सूफी मुस्लिम धर्म का तो केंद्र है ही, जैन धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र है, जहां शानदार सोने जी की नसियां नाम का मंदिर है। वास्तुकला और संस्कृति का ये अद्भुत संगम आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। इसकी पहली मंजिल को स्वर्ण नगरी हॉल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोने की परत चढ़ी हुई ऐसी अद्भुत प्रतिकृतियां हैं जो जैन धर्म के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दर्शाती हैं। अजमेर में किले, महल और पुरानी हवेलियां हैं। यहाँ का अकबर महल, जिसे अकबरी किला भी कहते हैं, वो खूबसूरत तो है ही, वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है, जिसकी पत्थर की दीवार जो है वो लगभग अभेद्य थी। ये महल 1616 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर और सर थॉमस रो के बीच हुई ऐतिहासिक मुलाकात के लिए जाना जाता है। अकबरी किले के अंदर अजमेर सरकारी संग्रहालय है, जहां पर ऐतिहासिक कलाकृतियां आप देख सकते हैं, मूर्तियां, लघु चित्र और बहुत सारी चीजों का एक शानदार संग्रह है, जिसे देखकर आपको वाकई अच्छा लगेगा। क्योंकि इतिहास के बारे में जब हम जानते हैं, वो उस समय कैसा हुआ करती थी, जमाना क्या था, किस तरह की चीजें इस्तेमाल करती थी, हमेशा अच्छी लगती है वो सारी चीजें। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप नीतू के साथ और तस्वीर में आज हम बात कर रहे हैं अजमेर की। अजमेर शहर की हलचल के बीच आप दो शानदार कृत्रिम झीलें भी देख सकते हैं, एक आना सागर झील जिसके पास है दौलत बाग गार्डन और खोबरा बेहुन मंदिर, दूसरी है फायर सागर झील। इसका निर्माण 19वीं सदी में अकाल राहत के लिए किया गया था। यहां से अरावली पर्वतमाला के शानदार नजारे दिखाई देते हैं। ये दोनों ही पॉपुलर पिकनिक स्पॉट्स हैं जहां पर आप बोटिंग, वाटर स्कूटर की सवारी, इन सब वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप टॉटगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य देखने जा सकते हैं या फिर मुगल काल के खूबसूरत बागीचे दुर्गा बाग की सैर कर सकते हैं। जहां भी जाएं वहां पर पूरा एंजॉय करें क्योंकि वो दिन न जाने फिर कब वापस आने वाले हैं।

अजमेर में आपको पारंपरिक हस्तशिल्प से भरे रंग बिरंगे बाजार बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे। दरगाह बाजार, नया बाजार और भी बहुत सारे बाजार हैं जहां आपको बेहतरीन राजस्थानी गहने, कपड़े और चमड़े का सामान और फड़ पेंटिंग या दूसरे हस्तशिल्प वहां आपको मिल जाएंगे। और पारंपरिक राजस्थानी भोजन के साथ साथ मुगल संस्कृति से प्रभावित व्यंजन भी आपको वहां मिलेंगे। मुगल शैली से प्रभावित बिरयानी जो है वो अजमेर का एक पॉपुलर व्यंजन है, तो आप उसे अगर जाते हैं टेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है वो है कढ़ी कचौरी। मिठाई में है सोहन हलवा और गर्मी में ठंडक पाने के लिए ठंडी रबड़ी लस्सी। तो जब आप अजमेर जाएं ये सब बातों का ध्यान रखिएगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौटती हूँ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
0: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सौ दशमलव एक आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू है आपके साथ और आप सुन रहे हैं तस्वीर। तस्वीर में आज बातें हो रही हैं अजमेर की, और अगर आप अजमेर में किसी एडवेंचर की तलाश में हैं तो पुष्कर में मिलने वाली ऊंट सफारी और हॉट एयर बैलून से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप चाहें तो दूर दराज के गांवों को जानिए, रेत के टीलों पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनका आनंद ले सकते हैं, और अगर वक्त है तो जाइए पुष्कर जो अजमेर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पर आपने ब्रह्मा मंदिर आप देख सकते हैं, पुष्कर झील देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के लिए वो प्रसिद्ध है। यहाँ प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेला भी लगता है जो दुनिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। हर साल लगने वाला ये मेला पूरे हफ्ते तक चलता है जहाँ हजारों सजे धजे ऊंट मवेशी और घोड़े नजर आते हैं। ये एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव है जो दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। इसके अलावा ना यहाँ पर कई तरह की गतिविधियों का आनंद भी लिया जा सकता है, जैसे ऊंट और घोड़ों की दौड़, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, जादू के शो, यहाँ तक कि सबसे लंबी मूछ की जो प्रतियोगिता है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो आप जाइए, और यहाँ पर दुल्हन प्रतियोगिता भी होती है, तो आप जब अजमेर जाएं तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का ना ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार हम जो इंटरनेट से रिसर्च करके तो जाते हैं मगर कुछ कुछ चीजें ना रह जाती हैं, और वहां जाकर हमें पता चलता है, अरे हम जब वहां से वापस आ जाते हैं, अरे ये तो रह गया, ये तो हमने किया ही नहीं। तो अभी इसीलिए मैंने सारी बातें आपको बताई हैं ताकि आप ध्यान रखें इन सब बातों का।

तस्वीर का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो नीतू को इजाजत दीजिए। आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आपकी मेरी मुलाकात फिर होगी इसी चैनल पर। जल्दी ही सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

कसता लता मंगेशकर तंग किशोर कुमार सलकनी सिलसिला फिल्म लुसानाजात जावेद अख्तर सुमसला यांग स्विकन शेफ हरी।

ये फिल्म लुटी ग्री में संजू पेका कासादा उदित नारायण सरकने कयामत से कयामत तक फिल्म लो संचस लफुलिन मचरू सुल्तानपुरी इरसोम स्लायंग श्रीकन आनंद मिलन

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
3: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओ आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
3: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
3: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
3: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओ अब इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
3: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
3: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
2: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
3: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
3: जी।
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
3: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
3: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
3: जी, ये बात तो है।
2: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
3: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
2: जी
3: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
2: जी।
3: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
2: जी अजीत जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्मय को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुनें।

0: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
1: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
2: बहन जी, डाकिया।
1: अच्छा, खोलते हैं भैया।
3: जी कहिए।
2: आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
3: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
2: तो कोई बड़ा है घर में?
3: हाँ, घर पर माता जी है ना।
2: जी बुलाइए।
4: माँ।
1: हाँ।
4: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
1: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
2: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
0: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
4: माँ, माँ।
5: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
0: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
5: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
0: हाँ।
5: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
6: अरे वाह,
1: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
6: ऐसे नहीं,
4: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
5: अरे योगेंद्र।
0: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है। फौजियों का? तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
5: माँ,
6: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
0: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
6: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
2: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
0: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
2: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
0: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
2: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
0: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
2: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थी।
0: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
7: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
8: जी साहब।
7: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते।
8: चलो साथियों।
0: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे, उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेनाध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: दर्शक जरंगे NCERT चिंतक जात का नेटग्रिम उमंगे खाक चिक्सोंगे प्या गुपचु गुपजी पा सना जात नजे आकाशवाणी लेने जुन्जिक तंगेन निमे छुचोत चिक छादोक का साता तुस्तो चपी गस्तिंग ने आकाशवाणी दिल्ली ने हिंदी तंग अंग्रेजी ना नसुल सना जात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu has urged the police in the country to become more citizen-centric and sensitive while dealing with people, especially women, the poor and children. President Murmu was addressing the gathering after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim police during Alankaran parade held in Gangtok.
3: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके महिलाओं बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए साइबर क्राइम ऑनलाइन फ्रॉड हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
2: Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the ULAS, Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that re-evaluation process will now begin after certain issues have come to light regarding the CBSE Class 12th examination evaluation process. Speaking to media after the meeting with CBSE officials in New Delhi, Mr. Pradhan said officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability will be ensured at all levels. Taking responsibility for the discrepancies, the Education Minister said the issues will be rectified and appropriate solutions will be worked out.
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले.
4: Children should receive transparent information about their marks. Through scan copies, the answer sheets should reach them transparently. This is a provision under the OSM system. For the first time in the country, CBSE has implemented this system. Some discrepancies have come to notice in it. I take responsibility for this and it will be corrected properly. We will make sure that no genuine query raised by any student remains unanswered.
1: Unanswered query ko asamadhit nahi chhodenge.
2: The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate, CUET, UG 2026 examinations. As per the NTA, examinations will now be conducted on the 31st of this month and the 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid ul-Adha. NTA said admit cards for candidates appearing for the test on Sunday have been released and they can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. The admit card for the remaining candidates whose examination is being scheduled on the 6th and 7th of next month will be released soon. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah will submit his resignation to the Governor this afternoon. State Parliamentary Affairs Minister H.K. Patil informed this while leaving the breakfast meeting called by Siddaramaiah. He said Siddaramaiah has been told by the Congress High Command to resign and accordingly he will submit his resignation at Lok Bhavan. He further informed that D.K. Shivakumar will take over as the Chief Minister. Bharatiya Janata Party BJP leader from Punjab, Kewal Singh Dhillon, has been appointed as the state president of the party's Punjab unit today. He has been given the charge of Punjab unit by the party's national president, Nitin Naveen. Iran's Revolutionary Guards today said they targeted a U.S. base this morning in retaliation to American strikes near Bandar Abbas Airport. Tehran did not disclose the location of the base that was attacked, but Kuwait, a U.S. ally, said earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. Today is the birth anniversary of great nationalist and freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar, popularly called Veer Savarkar. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah remembered the great leader on the occasion. The festival of sacrifice, Eid ul-Adha or Bakrid, is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. People offered prayers in Eidgahs and mosques this morning. Later, they exchanged Eid greetings. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. And with that, we end this news bulletin.
5: मीडियम वेव 284.9 मीटर्स यानी 1053 किलोहर्ट्ज़ और एफएम मेगाहर्ट्ज़ 101.1 पर

जय हिंद फौजी भाइयों, इस वक्त के कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए इस कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं शंकर महादेवन और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में दोस्ताना फिल्म से इस गीत को। गीतकार है कुमार और संगीतकार है विशाल शेखर।

लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम में अगला गीत नीरज श्रीधर की आवाज़ में भूल भुलैया फिल्म से। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं सोनू निगम और साथियों को सलाम इश्क फिल्म में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

अभी आप सुन रहे थे धूम टू फिल्म से गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में। अगला गीत लीजिए सुनिए, दिल चाहता है फिल्म से। आवाज़ें हैं शंकर महादेवन और साथियों की, गीतकार है जावेद अख्तर और संगीतकार है शंकर एहसान लॉय।

अभी आपने सुना बंटी और बबली फिल्म से गीत अलीशा चेन्नई, शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाज़ों में। फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम के अंत में फौजी भाइयों सुनेंगे सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म से इस गीत को। साजिद वाजिद के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है हैप्पी ने।

इस गीत के साथ फौजी भाइयों, वक्त हो चला है आप लोगों से विदा लेने का। हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।

0: हम आकाशवाणी लेह से बोल रहे हैं। दिन के 1:50 हो रहा है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें, मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE 12वीं क्लास के इम्तिहान में जांच के अमल और OSM निज़ाम में खामियों से मुतालिक तलबा की तमाम शिकायात को हल करने का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेस से अपील की है कि वो शहरियों पर ज़्यादा तवज्जो दें और हसास तबकों के तहत ज़्यादा हसास रवैया इख्तियार करें। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है। नायब वजीर आला DK शिवकुमार उनकी जगह लेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंग बंदी कशीदगी का शिकार है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों ने स्ट्रेटजिक तौर पर अहम आबनाए हुरमुस के नज़दीक एक दूसरे पर फिर से हमले करने शुरू कर दिए हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आज़म ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। और बैडमिंटन में PV सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में मुनक़िदा अलंकरण परेड के मौके पर सिक्किम पुलिस को बावकार प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से नवाजा। इसके साथ ही सिक्किम इस एजाज से सरफराज होने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शुमाल मशरिक की 3री रियासत बन गई है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया कि वो शहरियों को ज़्यादा अहमियत दें, नीज़ अवाम और ख़ासतौर पर ख़वातीन, गरीब अफराद और बच्चों के मामलों में हसासियत का मुजाहरा करें।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से साइबर जराइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डीप फेक से मुतालिक खतरात से निमटने की गरज से तैयार रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर जमहूरिया ने अमन कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से निमटने में सिक्किम पुलिस के किरदार की सताइश की। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर गैर मामूली खिदमात, नज़्म व ज़ब्त और मुल्क के लिए खुद को वक्फ कर देने के एतराफ़ में पुलिस फोर्स को अता किया जाने वाला आला तरीन रस्मी एजाज़ है। इस दौरान सिक्किम को बाज़ाब्ता तौर पर एक मुकम्मल ख्वादा रियासत करार दे दिया गया है। ये ऐलान कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में गंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद के दौरान किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमलावरी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा है कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे की तरफ बढ़ना है और असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकतदारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोबर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में तेज़ी लाएं। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपये मालियत के रेलवेज़, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायज़ा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों पर, खासतौर पर शहरी इलाकों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फरोग देने के लिए रूफ टॉप शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया कि वधवन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहां हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिला रुकावट लॉजिस्टिक्स इको निज़ाम के साथ मरबूत किया जा सके। वजीर आजम ने दरियाओं को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट केन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी ताबुन, बरवक्त मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निज़ाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज तलबा को यकीन दहानी कराई कि सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE की जानिब से नए मुतारफ कराया गया ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निज़ाम एक तरक्की पसंद वसीला है जिसका मकसद ज्यादा शफाफियत को यकीनी बनाना है। जनाब प्रधान आज नई दिल्ली में CBSE अहदेदारों के साथ एक मीटिंग के बाद मीडिया के अफराद से गुफ्तगू कर रहे थे। OSM निज़ाम में खामियों और CBSE के 12वीं जमात के इम्तिहान के लिए अजसर नौ जाँच के पोर्टल में तकनीकी खराबियों से मुतालिक तशवीश के सिलसिले में वजीर मौसूफ ने इस बात का एतराफ किया कि बाज़ मसाइल पैदा हुए थे। उन्होंने तलबा को यकीन दिलाया कि अजसर नौ जाँच के जारी अमल के दौरान सभी शिकायतों का इजाला कर दिया जाएगा। जनाब प्रधान ने कहा कि उहदेदार इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सभी तलबा के मसाइल को हल ज़रूर किया जाए और सभी सतहों पर जवाबदही को बरकरार रखा जाए।
4: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया आज सहपहर गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। कर्नाटक के पार्लिमानी उमूर के वजीर HK पाटिल ने सिद्धारमैया की जानिब से तलब की गई ब्रेकफास्ट मीटिंग से रवाना होते हुए इस बारे में मुत्तला किया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया को कांग्रेस हाईकमान की तरफ से बताया गया है कि वो मुस्ताफी हो जाएं और वो बाकायदा लोकभवन में अपना इस्तीफा पेश कर देंगे। उन्होंने मजीद बताया कि DK शिवकुमार वजीर आला की हैसियत से ओहदा संभालेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंग बंदी को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब दोनों मुल्कों ने आबनाए हुरमुज के नज़दीक एक दूसरे पर बराह रास्त फौजी हमले किए, जो स्ट्रेटजिक के तौर पर काफ़ी अहमियत का हामिल है। आज सुबह सवेरे अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के 4 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया, जो उसके मुताबिक आबनाए हुरमुज के नज़दीक अमेरिकी फ़ौज और उसके तजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा बने हुए थे। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया और अमन बरकरार रखने की गरज से की गई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों मुल्कों ने कल बीजिंग में भारत चीन सरहदी उमूर से मुतालिक मुशावरत और तालमेल के लिए वर्किंग निज़ाम की 35वीं मीटिंग के दौरान सूरत हाल का जायजा लिया। ईसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा या बकरा ईद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज आज सुबह अदा की, बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की। पेश है एक रिपोर्ट।
5: बकरीद की नमाज अदा करने के लिए लोग नज़दीकी मसाजिद में जमा हुए। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। रियासती सरकार की तरफ से सभी जिला पुलिस सरबराहान को एक एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई नई रिवायत शुरू ना हो और ममनुआ जानवर की कुर्बानी ना की जाए। DGP राजीव कृष्णा की हिदायत के बाद पुलिस ने हसास इलाकों में फ्लैग मार्च किया, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ये त्यौहार पुरअम तरीके से मनाया जा सके। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: خاص خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورسز سے اپیل کی ہے کہ وہ شہریوں پر زیادہ توجہ دیں اور حساس طبقوں کے تئیں زیادہ حساس رویہ اختیار کریں. تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے سی بی ایس ای 12ویں کلاس کے امتحان میں جانچ کے عمل اور او ایس ایم نظام میں خامیوں سے متعلق طلبہ کی تمام شکایات کو حل کرنے کا یقین دلایا. اور کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارمیا نے استعفے کا اعلان کیا ہے. نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار ان کی جگہ لیں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.

0: Dr. Jaishankar also appreciated Mr. Alvarez's views on ongoing global and regional developments. The External Affairs Minister reached Cyprus today to take part in the meeting. India and China have reviewed the situation in border areas and expressed satisfaction with the progress made in maintaining peace and tranquility. The two countries reviewed the situation during the 35th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, which was held in Beijing yesterday. The Ministry of External Affairs said the discussions were constructive and forward-looking. The two sides discussed issues pertaining to delimitation, border management, mechanism building, and cross-border cooperation. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has announced his resignation from the post. He will submit his resignation this afternoon. State Parliamentary Affairs Minister H.K. Patil informed about Mr. Siddaramaiah's decision after attending the breakfast meeting hosted by Mr. Siddaramaiah for his cabinet colleagues at the Chief Minister's residence today. Mr. Patil said the move came following directions from the Congress High Command. He also announced that Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar will take over as the new Chief Minister. Mr. D.K. Shivakumar was also present in the meeting. More from our correspondent.
1: The symbolic hug by Siddaramaiah and D.K. Shivakumar during the breakfast meeting today said it all. It drew curtain on the speculation about the resignation by Siddaramaiah. Chief Minister's office has informed that Siddaramaiah will go to Lok Bhavan at 2:30 p.m. today and address media persons at 3 p.m. In the absence of Governor, who is on tour, the resignation will be handed over to the Secretary. The longest serving Chief Minister, including a full 5 years term from 2013 to 18 and 3 years in this second term since May 2023, Siddaramaiah will hand over reins to D.K. Shivakumar finally for a remaining period of 2 years. Swearing in and cabinet reshuffle remains to be decided now. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
0: The Bharatiya Janata Party today announced the appointment of new state unit presidents for three states and national capital Delhi. BJP National President Nitin Naveen has appointed East Delhi MP and Union Minister Harsh Malhotra as the party's Delhi Unit President. Dr. Archana Gupta has been appointed as Haryana BJP Chief, and Keval Singh Dhillon will be the new President of the Punjab BJP. Abhishek Dev Roy has been appointed as Tripura BJP President. The West Bengal government has intensified measures against illegal infiltration under its Detect, Delete, Deport policy. Our correspondent reports that infiltrators are being detained and deported to Bangladesh after completion of legal formalities. Officials said around 50 Bangladeshi nationals were reported at the Hakimpur checkpost in Swarupnagar of North 24 Barganas today, seeking to return home. Around 350 people are currently housed in three holding centres in the area awaiting deportation. Security and surveillance have also been strengthened in border areas to check illegal infiltration. In Bihar, eight people were killed across the state following a wave of severe thunderstorms, lightning strikes and hailstorms. Chief Minister Samrat Chaudhary announced ex gratia compensation of 4 lakh rupees each to the next of kin of the deceased. Meanwhile, the India Meteorological Department, IMD, has issued red alert for severe heat wave conditions over eastern Madhya Pradesh and Vidarbha today. Heat wave conditions are also expected over Delhi, Chandigarh, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Konkan, Goa, Odisha, Punjab, Telangana and Uttar Pradesh today. The Met Department further predicted heavy rainfall over parts of northeast India, Bihar, Tamil Nadu and Puducherry for the day. Today is the birth anniversary of great nationalist and freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar, popularly called Veer Savarkar. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah remembered the great leader on the occasion. Prime Minister Modi in his message said the courage and patriotism of Veer Savarkar will always inspire people. Home Minister said, a fearless warrior of the freedom struggle, Veer Savarkar dedicated his entire life to the service of the motherland. The festival of sacrifice, Eid ul-Adha or Bakrid, is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. People offered prayers in Eidgahs and mosques this morning. Later, they exchanged Eid greetings. Eid ul-Adha is celebrated to commemorate the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his only son in obedience of God's command. In the national capital, main congregations were held at Jama Masjid, Fatehpuri Mosque and Shahi Eidgah. Reports of Eid prayer congregations are also pouring in from other parts of the country. Elaborate security arrangements have been made for the occasion. In West Bengal, lakhs of devotees offering prayers at mosques and Eidgahs. Our correspondent has the details.
2: In Kolkata, the Eid prayers were held at the Brigade Parade Ground instead of the traditional Red Road. At the historic Nakhoda Mosque, prayers were conducted in two sessions, ensuring roads remained clear. The state government has strictly enforced the old Calcutta High Court directive, urging peace and discipline during the festivities. Millions gathered at more than 5,000 mosques and prayer grounds in Murshidabad. In Malda, the state's second largest congregation took place at Sujapur's Noy Mauja Eidgah. Large gatherings were also reported in Nodia, North 24 Parganas and South 24 Parganas, with women joining prayers in many locations.
3: Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
0: Cities across Madhya Pradesh are celebrating Eid ul-Adha today in a peaceful and joyful atmosphere. We have a report.
4: In Bhopal, thousands gathered at the historic Taj ul Masjid for special prayers. The Imam prayed for unity, brotherhood and progress in the country. A heartwarming scene came from Indore. Following a 50-year-old tradition, a Hindu family welcomed the city Qazi with a garland of flowers. They then took him to the Eidgah in a decorated carriage. In Gwalior, people from other faiths also gathered outside mosques to greet the Muslim community. Meanwhile, the Madhya Pradesh Waqf Board has issued important guidelines for the animal sacrifice. People have been asked not to post photos or videos of the sacrifice on social media so that the communal harmony is preserved. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
0: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. The fragile ceasefire between the United States and Iran has come under severe strain after both sides exchanged military strikes near the strategically important Strait of Hormuz. The U.S. military said it shot down four Iranian attack drones and struck a drone control station in Bandar Abbas. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps confirmed the strikes and said it retaliated by targeting an American military base as Kuwait, a U.S. ally, said. Earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. In badminton, India enjoyed an impressive day at the Singapore Open today, with Lakshya Sen, PV Sindhu, the men's doubles pair of Chirag Shetty and Sattvik Sairaj Ranki Reddy, and the mixed doubles duo of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto all advancing to the quarterfinals. Sindhu defeated Japan's Riko Gunji in pre-quarterfinals of the women's singles round of 16. Lakshya sailed into the last eight after Thailand's world number 2 Kunlavut Vidithsan retired hurt just moments into their round of 16 clash. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections. Education Minister Dharmendra Pradhan assures resolution of all grievances of students regarding discrepancies in CBSE Class 12 examination evaluation process. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announces resignation. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar set to take over. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. And in badminton, PV Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. With that, we end the midday news.
5: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Kanak Lata. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
6: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
7: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
5: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डी के शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
8: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
5: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
9: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
5: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
10: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बगही में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
5: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
11: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से
5: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
12: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदास ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: Medium wave kilohertz chikstong ap chungak sum, yang na meters ngibegya chugyab jitang shuzurgu, yang FM megahertz gyanang chiktang shuzur chigeka, ngaji akashvani lene juin jiktangin. Ngime chutsot ngistang pechaduk, kasata ngistang skarma ngap chungang atsukpa, ladak silurik sanchesla polin. ইনা ছামে সংস্কুন্লা সোনাম ডোলমে সালকানে ইলুবো সানাজাত।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

खसता फ्लेमिलो एटिक्रिमिना स्वीकार किया मैंने फ्लेमिलो निदा लता मंगेशकर ने सनजत निदा फजली सुमस्कानी लोयांस रिकन उषा खन्ना।

0: Shafiri li dan chopari sal kani lurik sana zadin. Ngato chuzo kuna petika filmi lurik, ngato chuzo chuni ngime chuzo chukni sakpa FM Gold Delhi Dream Gun sana zadin. Ngime chuzo chukni sakpa filmi lurik chukni zna petika NCA teaching dasat kani dream umang sana zadin. Tori ngime chuzo chiknas kamas chuka mami kato dream na filmi lurik. Ngime chuzo ngistam petika sun langa wang rigjene sal kani lu ngato sinu sunam stop gestan chopari sal kani lurik sana zadin. Dirim tampe sing jupi ka tori ngimi chuzot nistan skar mangap chungaye ka ladak sinan natsul sana zadein. Kasatang aje tori sing ngimi dirim ngispe skor ngujuna, dirim ngispe na tori pito chuzot rngye ka ladak sinan natsul. Pito chuzot rngan askar mar rngye ka fon gites nga gazat kani flemelu dirim sana zadein helo farmaish. Tori se dirim pulkan tsirin konchok. Tori pito chuzot rngan askar mangap chungaye ka ngaji dirim gune skur. Pito chuzo tugi ka Akashwani Delhi ne hindi na natsul tuknaas karmash ngay ka anrizina. Tore pito chuzo tuknaas karmash chui ka gamyul pes kadlon digrim sana zadin. Tuknaas karmash jib chui ka mamikotan digrimi na filmilurik. Pito chuzo dunnaas karmash ongay ka ladaksan natsul na testing ne idelchet. Tore pito chuzo dunna pedika zgon la. Tore pito chuzo dunna pedika tsirintashi salka nilurik sana zadin. Tore tsain chuzo gyadika junuguni fe digrim sana zadin. Tsani chuzot gyan nang pedika mingyur wang pesal kani lorik. Yang digrim nyispe sting jukpika tori tsani chuzot gu nang pedika tsewa nurbutan stanzin nam gyal sal kani lorik sana zadin. Kasate gu nipin ngaji dirin digrim nyispatan tori singi me digrim guni skorgun. Ngaji Akashwani leni jod. Pito gu chuzot tuk chatu kasata Akashwani Delhi neskun la hindi yang tasing ne ang rizina natsul gun sana zad.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धरमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री डीके शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देबरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देबरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के

वीएसआई आरआई औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों के कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सहअध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जय हिंद फौजी भाई। आज आपने इस वक्त के कार्यक्रम में सुनेंगे फिल्मी गाने। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं सुनिधि चौहान को न्यूयॉर्क फिल्म में।

आइए अब सुनते हैं के और शिल्पा राव को बचना ए हसीनो फिल्म में। गीतकार है अन्विता दत्त गुप्तन और संगीतकार है विशाल शेखर।

फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य को वेकअप सीत फिल्म में।

0: ngaje akashwani le nishut kasata tusto chapiges tingni ladak sen na chu langta singni delcha sanajat
1: प्रिय बीएसएनएल ग्राहकों, लद्दाख में बीएसएनएल ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी है। ये मौका बिल्कुल न गवाएं। बीएसएनएल का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस से संपर्क करें।

0: जाते तेने इनाना गक्सपे संगक्सपा ठुगुन फिंगुशस पुदिमबा माशाटे खखचाने नो इनाना ग्या पुदेने दिसकि लेंगा जंगि से चोना गिना टिक्रिमिना खखथु सेसकि चिस पथुक जे जुले
1: जुले छले
0: जुले
2: Yes, dan jadi tak sangat ada dua tilan degree bosan cik lepas orang leju.
0: Kasaju.
2: Ina nang yang pun ngata yang siang dilihat degree mekanik gongspa juin.
0: Julie, san modeling.

0: अरे काट दिया।
1: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
1: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कसता मोहम्मद हुसैन सलकनी ये पुर्गी लुबांग सनजात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
4: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4,00,00,000 बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
3: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत का लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीटवेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर दाखला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2 भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मुल्क में हर गैर कानूनी इमिग्रेंट का पता लगाने और उसे उसके वतन वापस भेजने के सरकार के पुख्ता अहद को दोहराया है। वो आज गांधीनगर लोकसभा हलके में 340 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने के बाद एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: जनाब अमित शाह ने वीर सावरकर के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात को भी याद किया। कर्नाटक में सबसे तवील अरसे तक वजीर आला के ओहदे पर फायज रहने वाले सिद्धारमैया ने आज बेंगलुरु में गवर्नर के दफ्तर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इससे कबल उन्होंने अपने काबीना साथियों के साथ नाश्ते पर मीटिंग की थी। बाद में नामानिकारों से खिताब करते हुए डीके शिवकुमार का नाम लिए बगैर उन्होंने गवर्नर मौसूफ से कहा कि रियासत में वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के लिए नामजद वजीर आला को मदु किया जाए। मजीद तफसील हमारे नामानिकार से।
2: दो मरतबा के वजीर आला और दो मरतबा के अपोजिशन रहनुमा सिद्धारमैया ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 17 रियासती बजट पेश किए थे। उन्होंने रियासत में अहिंदा तहरीक शुरू की थी जो पसमानदा तबकों और अकलियतों की नुमाइंदा थी। सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान की मर्जी के मुताबिक इस्तीफा दिया है। आज अहिंदा ग्रुपों की तरफ से इस्तीफे के खिलाफ रियासत के बहुत से इलाकों में मुजाहरे किए गए। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के हामियों ने खुशी मनाई। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही कानून साज पार्टी के एक नए रहनुमा को चुनने और काबीना में इम्कानी रद्दोबदल के मजीद इकदाम पर बातचीत के लिए दिल्ली आ रहे हैं। बेंगलुरु से सुदिंद्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को यकीनी बनाने का तहैया कर रखा है कि मुल्क में कोई भी गरीब आदमी कच्चे मकान में न रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,91,00,000 मकानों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है जबकि निशाना 4,95,00,000 मकानों का है। जनाब चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा मकानों की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी सरकार बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों को मरबूत करके देही इलाकों के कुनबों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। खवातीन को बाख्तियार बनाने को उजागर करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन मकानों को मंजूरी दी गई है उनमें से तकरीबन 75% मकान या तो खवातीन के नाम पर हैं या मुश्तरका मिल्कियत में हैं।